0: बनाया है।
1: अच्छा, क्या बात है, बड़ा यूनिक जिहा गीत है, यही है ना।
0: हाँ,
1: चलो सुन लो फिर, लोने पूरा गीता लो।

0: लिखता रही, फटा शायर बनी तेरे बोला करके हंसी कदी।
1: वाह यार गाना बड़ा वधिया यार, किन्ना तुसी देखो क्रिएटिव किन्ना। थैंक यू भाई जी यार, तुसी बड़ा वधिया गीत सुनाया अज, पहली यारी मैं सुनया। वाह।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: बिल्कुल, मेरे नाल जुड़ गए ने जी हुसनैन जी, साढ़े बहुत अच्छे दोस्त ते विश्व पंजाबी सभा दे नाल बड़े गहरे संबंध ने जिन्हां दे। देखो विश्व पंजाबी सभा ही है जिन्हां ने देखो हुसनैन जी अपना मेल करवा दिता है,
1: जी हमें
0: ते विश्व पंजाबी सभा दा तुसी एक वैसे ओ सुनाउंदे वे हुंदे वी विश्व पंजाबी सभा दा जिहड़ा मेन एक पर्पज ही है ना कि विछड़े दोस्तां दे मेल करवा दिंदी है। मैं अज ही दस रहा सी कि कोई शिकागो तो आ रहा है, कोई सियाटल तो आ रहा है, इंडिया तो कोई आ रहा है, और साडे कैनेडा दे विच कोई ब्रिटिश कोलंबिया तो आ रहा है, कोई अल्बर्टा तो आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड तो भी एक दोस्त आया हुआ सी, न्यू ब्रंसविक तो आया हुआ सी, वक्खरियां वक्खरियां स्टेट्स तो कैनेडा दियां तो लोग पहुंचे हुए सन। सो विछड़िया दे मेल देखो मैं अगे कह रहा सी कि एक तां सिधांतक पक्ष हुंदा है कि बहुत सारा लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਰਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਜਲਸਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਕੁਝ ਪਰਮ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਹੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,

देश अपना छड़ सुधार अंबड़ी जाया जा नहीं, सानू नाल फिराक दे मारना ही। ए बंदियां असी गुलाम तेरे, कोई हो चा

0: स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

खूबसूरत सुबह का आगाज़, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जिसे सुन रहे हो उत्थे आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओंटारियो के सानू बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि सारनिया के बॉर्डर तो लैके नैगरा फॉल के बॉर्डर तक, नैगरा फॉल तो लैके बैरी, बैरी तो लैके सानू मस्कोका काउंटी तक जिथे ग्रैवनहस्ट तो लैके ओरेलिए तक सुनते हो 411 हाईवे के उपर। उ नॉर्थ ईस्ट के सानू लिंडजी पीटरब्रो होंगे हुए साउथ के बैलवल तक सुनते हो, इंटायर जी टी ए लंडन किचर वॉटलो कैम्ब्रिज होंगे हुए सानू सारनिया तक और चैटन तक सुन रहे हो। तकरीबन 1000 किलोमीटर के रेडियस में ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा सुनते हो इस लार्जेस्ट रेंज कवरेज फ्रीकुएंसी के नाल डिजिटल फ्रीकुएंसी M530 जिथे मैं थोड़े लिए एक टैकेट तो भी वध दा समा हो चुका हैगा जिथे इस दूर दर जिहड़ा हैगा तक सुन वाले साढ़े इस चैनल नूं तुसीं सुणदे हो उहदे उपर शो प्रजेंट करदे हां। आप सब दा हार्दिक स्वागत करदे हां एक बार फिर तो। आप सब दा जो कॉल दा इंतजार रहेगा कि भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का इंतज़ार है, जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है। चल पियो सफ़र दे वल और अपने घर तो कम, कम तो घर तक दे शो दे विच मैं इस पीरसन एयरपोर्ट के ट्रैक 6 तो जिथे फेडेक्स अपनी उड़ान भर चुका उत्थे इंटरनेशनल जिहड़ियां फ्लाइट्स ने वह भी इस समय एग्जिट कर चुकिया ने एयरपोर्ट नूं, यानी कि हवा दे विच जो उन्हां दा काम उड़ना जिन्हों पर रिस्क कहने कि बहुत रिस्की होंगे वो रिस्क लेंदिया ने उड़दिया ने एयरपोर्ट पर खड़े रह के उन्हों की इज्जत नहीं बनती, हवावान चीरन रिस्क लैन ही जिंदगी बनती है उन्होंने। तो आप भी इस तरह है कि एक जगह पर खड़ के खड़ो तरह की है कि जिंदगी बहुत समय कट जानी चाहिए है, ठीक है अप एंड डाउनस आने मेरे भी आते हैं आपते भी आने चलते रहेंगे ने, इंसान भी चलता रहता।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: Real estate di duniya vichao. Apne supneyan nu sach kar vikhao. Fair Deal Realty Inc. brokerage nal hath milao.
2: Real estate diyan barikiyan sikho. Te company valo clients leads vi pao.
1: Fair Deal Realty Inc. brokerage nave agent hire kar rahe ne.
2: Aaj hi call karo. Fair Deal de broker of record Hardeep Pandher nu.
1: 905-671-2000.
2: Fair Deal nal hath milao. Apne supneyan nu sach kar vikhao.
3: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
4: ड्राइविंग लाइसेंस?
3: नो.
4: पुलिस ऑफिसर?
3: नो नो.
4: ट्रैफिक लाइट्स?
3: नो.
4: देन
5: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज. मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले. आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज दा काम कर रहे पवन कौर गिल. 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस

0: कर सकती है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज से 647-325-9900 6472529100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
1: माय फेवरेट मेरी पहली पसंद आई लव इट
2: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती
1: हम सबकी पसंद रेडियो आवाज एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530 नॉनस्टॉप कॉल्स नॉनस्टॉप टॉक्स Promote your business with us. Contact 416-518-3200.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही ले लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू, ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
5: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विचान।
6: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दियां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, रिस्पांसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
5: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
6: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: डोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
3: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
4: Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

भाई वाह भाई वाह। शनिवार नू नाइट हो रही है 17 अक्टूबर शाम नू 7:30 बजे मैरियट होटल 410 एंड स्टील दे कॉर्नर दे कॉस्को वाला प्लाजा दे नाल जेड़ा होटल है ओदे विच हो रही है।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हां जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदो दियां चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
4: 32-55-80
5: ते 98
4: एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
5: वो काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने, जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: आज खुश तो बात हो गया था।
4: ओ ता होना ही है जो तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
4: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
5: चल क्या रहे हो पर?
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: मौसम मौसम मौसम लवली मौसम, क्या बात है, बड़ा ब्यूटीफुल। यू नो शाम हो गया तो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो ऑन कर चुके हो। सब तो पहला मैं दस दें देश परदेश की स्टूडियो से घड़ी दे शाम के 3:07 से 31 सैकेंड होए ने। तजिंदर सिंह सिद्धू सदमा वाले वालों सारे ही स्रोतियों प्यार मुहब्बत न सत श्री अकाल जियानो जी सबनों। जी हाँ, बहुत सारा ढेर सारा सत्कार अज के प्रोग्राम के हूँ तो लैके ठीक शाम के 6 बजे तक अपनी मुलाकात है। 1 घंटा असी लगावे तो फिर अगे जाके बहुत कुछ होएगा, खबर भी होनगियाँ कैनेडा दियाँ जी, बहुत चर्चा होएगी। तो मेरे वालों सब नी
1: जी नाल साथ दे रही है मैं मनप्रीत कौर तूर, मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है तुसी सारे मौसम नू पूरा इंजॉय कर रहे हो ते साडे नाल तुसी जुड़ चुके हो पूरे 3 घंटिया दे लई। ते स्टूडियो दा नंबर इको एक हुंदा है, साडे नाल तुसी गलबात करदे हो हर रोज 905-564-6444 905-564-6444 दे उपर तुहाडी साडी गलबात हुंदी है। हर रोज 3 घंटे दा टाइम हुंदा है ते उम्मीद है कि तुसी अज भी प्रोग्राम दे नाल जुड़ चुके हो।
0: अच्छा मनप्रीत, 7 तरीक हो गई अज अक्टूबर महीने की, पर मौसम पहला मेरा फिक्र ही वो सी लवली लवली मौसम। वो एक शिव कुमार साहब का बड़ा प्यारा गीत है, अज दिन चढ़े आ तेरे रंग वर्गा, है ना, धुप खिली हुई है पूरी प्यार मुहब्बत वाली, है ना, बाहर बहुत वधिया मौसम आ, सारियां इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि जिन्ना भी आपां नूं हुंदा विंटर तो पहला पहला जिन्ना भी आपां नूं बोनस दे विच मिल जाए ना ओ दिन अपने वास्ते वधिया ही ने। धुप देखण नूं मिलदी क्योंकि आपां लोक तो फिर भी इस काम कार ते जुड़े रहे ने, है ना, जिहड़े लोक जिहड़े धुप दे शौकीन ने गोरे लोग तो स्नो पैंदी अपने चिट्टी चादर जी बैठदी है ना, ते फिर ओह भजदे आ अपने आईलैंड वल नूं।
1: हांजी
0: ते आपां तां फिर भी कई वार कम करदे लगे रहिंदे आ, पर उहनां दा पक्का ही हुंदा वी जाणा ही जाणा,
1: बिलकुल हांजी,
0: जदों विंटर दे विच 1-2 महीने पासे लाए आउणे आ जद तई फिर इधर खुल जांदा मौसम। पर अपने भी हुण बुजुर्ग एवें करदे आ ना, भई जदों विंटर विंटर
1: इंडिया चले जांदे आ
0: पंजाब लाए आउंदे आ, नाले पंजाब च मेले गेले हो जांदे आ,
1: बिलकुल,
0: नाले पौण पाणी चेंज हो जांदा,
1: नाले व्याह शादी देखी
0: जांदी, शादी देख लैंदे आ,
1: सीजन हुंदा
0: पूरे चार्ज हो गए आउंदे उत्थों।
1: हांजी
0: गर्मियां दे विच
1: बिलकुल
0: तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ
1: ਜੀ।
0: ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ
1: ਜੀ,
0: ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ
1: ਜੀ।
0: ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ,
1: ਹੈ ਨਾ,
0: ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ
1: ਜੀ।